प्यारे श्रोता, ये एफएम वॉइस ओरिजिनल साथ है और मैं हूँ आपके आरजे सांगपुई फिर वापस आप सभी के लिए। आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एफएम जवोई में और इस प्रसारण में हमें फैमिली कहता है दिल बार बार और सिंग इज किंग फिल्मों से लिया गया गीत सुनने को मिलेंगे। आज मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आज आप सभी हमारे साथ एफएम जवोई में बने रहेंगे। इस प्रसारण की शुरुआत के लिए सबसे पहला गीत रहेगा जी करदा और ये गीत आप सभी के लिए है, तो इस गीत का आनंद लेते हैं।

वो था जी करदा लब जान जुआ द्वार गीत है। यहाँ पे आपके संदेश आए हैं और एस एम एस रंग सबर चंगिन कंचन हाकते पा बिल खतर यानिन आज संग पुहल्ले लतुर्खा मी इन गई लौ पत्नी मासे इन गाय मेम थौ सी वी कु तेले मामुनी रोम लोट तान ले तान करोन लाने रंती आ जिंग थौ मा दौ हिचुन श्या छी ने तेरो कन सेगमेंट कन हन चन रोल यानिन इंगे कोर्ट ते नाव लो हन थुते ही कन हन छिले नो जेला वान इंगे कन वान इन दे जाय लम छी ने हम तेरो जी हुन ते कन मंग छाइन करिंगा हितेन रुदास असम से संदेश आए है और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग आर जे जी जी आपको भी नमस्ते। हम आशा करते हैं कि आज आप हमारे साथ एफ एम जोई में बने रहेंगे। कनाव सियाल दे मैं माहुनी रम लोत रन लगा अनि हन आज संग पुइ वो इनसु ख्वा लुम लौसे लहित दे दे ngai थप केला अनुआ मंग छु और रंदिया और लमोय तक तक ते कु लम पंग दे उते पोखा रंती छवा कन लौ तुमंगा चांग ले कन रन बे होत वियाउ तुर हन ngai ला तेरो विकुं ते ते लम पुइ थे तुर ने खा रंती छवा कन तुम दोने आई अगले गीत की ओर बैठे है। और यहाँ पे अगला गीत रहेगा मैं हुना फिल्म से लिया गया गीत मैं हुना और ये कीजिए खास करके आगते पाबिल को क्लियर हितन रुदास असम मामुनी रम लोडले वी कुंग ते ते सेगमेंट मसबर रन लंग ये एस एम एस रन थन मसपोल ते खा इन तान सियाल तो किन्नी से तो इस गीत का आनंद लेते हैं मैं हूं ना।

अभी जो हमने गीत सुना है वो है मैं हूं ना, जो कि मैं हूं ना फिल्म से लिया गया गीत है। यहाँ पे आपके संदेश आए हैं वी कुंते से अनिहान इन आज सांग पुई जिंग लम चिबाइले निजाने मु तो यम तो किनी था उन्हों आमे मो इफात एन अंगे एन से एम मरंती है ओ दियोती मा जानी चुआन मुथी अतुई मो वे मो थो हाई ते कलाउ चिन वांग यान इन एंगे कहर जिंग वे थे खोप में आ मासे मुत्सुना मुत्सुंग ना ना ही चुन ओ मुतुई वे खोप में कफपा पो फेल खोप में आ अंगे अच्छो वाते कदिन शाय फेल मन अमो अच्छो वांग चुन इन अपोर छती चुन इन अतले अंगे अतले वे आ मिन गे एम एम लो चुन कदिन कलसन थे नि ओ मामुनी रम लो तलो लंगा अनि हियान इन आजे सांग पुई कोर्ट ते नाउ कन होन पोन मैं हूं ना लो तिसेरो hello ma ka nom renga tero ma huna ti kha poi mo lo mo vi kung ten en khanin nge in lo me huna de tsar tsar donya jel zama message ran khanga he tsun kin a tsar tan kan ke gringa agle git your birthday he or yaha pe agla git rahega

अभी जो हमने गीत सुना है वो है सुन जरा, जो कि लकी फिल्म से लिया गया गीत है। यहाँ पे आपके संदेश आई है हितेंद्र दास असम से और ये कहते हैं, हेलो आकाशवाणी आइजोल स्टेशन एफएम जोई बैंड 100.7 वारंटिया, वेरी नाइस प्रोग्राम ऑफ हिंदी सॉन्ग्स, गुड मॉर्निंग आरजे जी, नमस्कार, हाउ आर यू वारंटी। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कैसे हो हितेंद्र दास जी? और ये कहते हैं, आई एम ट्यूनिंग इन राइट नाउ, जान है आकाशवाणी, प्यार है आकाशवाणी, लव है आकाशवाणी, बंधु है आकाशवाणी, आकाशवाणी तुम आके वलोभाषी। आकाशवाणी वो हितेंद्र दास से संदेश आई है।

अभी जब ने मस्त सा गीत सुना है वो है क्या मुझे प्यार है और मामनी खान लो लामपुई तोड़ा हंगाए लहते रो है वी कुंग ते ये एस एम एस रन टाइप में का इंग्लिश आज ड्यूटी तो ही ये वी कुंग ते फेवरेट तजींग मी खाने आमो आज ते ते है स्टूडियो लो थेंग तो आ लो आए थे में का वी कुंग ते एस एम एस है अ टाइप से वी आ तोड़ा न्यांग है टाइपिंग ही लाइन ती देव चार चार आर जे ते ते एस एम एस तोर चोल नि एम लो तोर हन गाई ला तेरो कन सेगमेंट सुंग ही चोन अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला गीत रहेगा अगर तुम मिल जाओ जहर फिल्म से लिया गया गीत का आनंद लेते हैं और ये गीत है खास करके वी कुंग ते ते ले अच्छा नु माहुनी तन अन लो गाई था कतान इंगे वो इन हुना ते हुन नुआम तक इन लो मन थे ना दो सकन लान चुंग चे विन इन तान नी से तिन इंगे lir thei a chuang pa a lo ngai thla te pawh in awm thin a ni tih kan hria a lo lam atanga chul hrang hrang thawk pa a lo ngai thla thin te pawh tam zawk iniin kan ring a enge vuin hun nuam taka in hman theih nan leh in ti tur ang te thluang taka in ti theih nan duh sakna kan hlan cheuh a ni vi kung te se sunday shai he a ni hian ar jiu sangpui mam huni mi dawh thei em em a mi dawh thei em em a tan next ka karon thlang aw ni china hlamin thlan sak tu kha kalo shiman lo karon thlan sak let ve nga le arantia jelal zam hianin arje sangpui ilo duty kha ta wangin ma huni ramlo chanchin kim

वो था अगर तुम मिल जाओ जहर फिल्म से लिया गया गीत है। हमारी तरफ से एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। आकाशवाणी आई जोल स्वानी सोम पथुम थरुक सांग नि सुमनी परुक इन रुनी सुनो दार खतले मिनिट सोम ले दार नि इनकारा कुम उपाते ताना दानांगा अंदिक न लेचन वो चुंग चांग इन जिर तीर न ती थु पुई मंग इन लाइव फोन इन प्रोग्राम अब व्हाट्स आई दो न मल सोम दोंग जुआल एडवोकेट कनान वेंग ले सी लल रिन पुई एडवोकेट मिशन वेंग आई जोल मीटेन हुन रन मंगांग मोबाइल नंबर 9862476730 आ हियान हेमी हुन सुंग एसएमएस मो व्हाट्सएप एमओ इन ब्याक पोथे अनियांग ओ हे इन एसएमएस ते रन थेंग ले चक चका जोकर लिल जामा रन इन ति दो छुआया बुलचन नान हियान वी कुंग ते अनि हे हि वी कुंग ते हियान जोकर लिल जामा ति तका अथिल सोई ते हियान मिन ते लिम छिन आरजे सांग पुई नंग पुई लो लिम पुई वे मे रो रन तिया इन जवाय मे खान कन लिम पुई एम एम वेक छवा इन एसएमएस लो तक ते इन रन थोना हे हिंदी सेगमेंट तीर लमा ते मिंगमोय ते ते लथो मन सि आलो मा से अतम जो किन रन लंग थेया कन लोम ले नि मामनि रम लो थियान आजे सांग पुई जेल जाम सोइ खा दो ता पो दो सोम वेल नि खा आजे वेली बुला क सोयंग मो अरन फले जवा जवा मयंग नही हि नि तप मे कुंग लेर पो क दु छवांग लो लव ट्रायंगल नि दो न मुकत्या मा से हे एंगे हर सत नकन टोक दे क्लटिंग कशिया समय आ गया है इस प्रसारण के आखिरी गीत का और यहाँ पे अगला गीत रहेगा तुम मिले इमरान हशमी की आवाज में और ये गीत जो है दुर्गेश नगनपुर तो एसएमएस दौथन में एक तानिया निबक से और आप सभी एफएम लिसनर्स के लिए है। अगले प्रसारण में आपके साथ रहेगी आपकी प्यारी सी आरजे आरजे तेते आप सभी के लिए। तो इस गीत का आनंद लेते हैं तुम मिले।

0: Hey, thank you किसके लिए? I hope you're not too sleepy.
1: मुझे रात को नींद नहीं आती.
0: Okay.
1: Born in some

0: Sleeping pills बिना सोना impossible. But really, Akshay, मुझे याद नहीं कि मैं आखिरी बार इतनी कब हंसी.
1: अच्छा, अब आपको मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगने लगा?
0: बिल्कुल नहीं.

0: Hey, thank you किसके लिए? I hope you're not too sleepy.
1: मुझे रात को नींद नहीं आती.
0: Okay.
1: Born insomniac.
0: हाँ.
1: Sleeping pills बिना सोना impossible. But really अक्षय, मुझे याद नहीं कि मैं आखिरी बार इतनी कब हंसी.
0: अच्छा, अब आपको मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगने लगा?
1: बिल्कुल नहीं.

प्यारे श्रोता, ये FM जोर शोर शिमला साथ है और मैं हूँ आपके आरजे सांगपुई। फिर वापस आप सभी के लिए इस प्रसारण में हमें कलेक्शन बेस्ट ऑफ आर्काइव्स वॉल्यूम 1 से लिया गया गीत सुनने को मिलेंगे। और यहाँ पे सबसे पहला गीत रहेगा इस खंड के लिए अली हैदर द्वारा गीत पुरानी जीन्स। और जेल जामियानिन आरजे फिलते सेगमेंट लमा खानिन है जीन्स छुई लाई खोल मा छुई लाई खलाकरण थोना हमीन एंड पोहन इन मिलविया तुरिन कशिया। तो आइए इस प्रसारण की शुरुआत के लिए सबसे पहला गीत रहेगा पुरानी जीन्स।

वो था पुरानी जीन्स अली हैदर द्वारा गीत है और यहाँ पे आपके संदेश आए हैं एसएमएस रंथलिंग नॉल भैया।

अगले संदेश की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपके संदेश आए हैं वी कुंगते से अनिहानियन। मैं माहमुनी और हितेंद्र के विवाह समारोह का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। रंतीनी ओमजिया शथियाम लौते पोकनम में थे वी कुंगते हियानिन हितेंद्र ले माहमुनी ते इन नई प्रोग्राम ही अंगे इम्पेशियंट तो किन कलो हाग्रिंग तोनिया फुल तुक तोनिया रंतीने तुकनी mitui hi alwang top thei lo menga drama kungte insum zo le si lo nga zan mu thei lo phanan te ni mang le siang ti chu ka ban lao em mo ya hun pu ye lo langa ani hian a ji sang pu ye meng moi te a vi kung te nga te pa nguri sai lo fitness boy te john agus boy ma huni te tan le nang ma tan aran ti ni मुनपुई तलांगदुंग अचंग खानिन उलक तकाई लोंगै थाकतान पो खानिन नेक्स्ट सेकंड प्ले ले तुर हितान पो खान हनिंगाल से ओ मोया मुनपुई खा नेक्स्ट सेकंड प्ले ले तुर हि इलो थन सकताक तितान ले इंगे इतान पो खान निंगाल से आयेगली गीत की ओर बैठे है और यहाँ पे अगला गीत रहेगा तेरे होने लगा हु तो इस गीत का आनंद लेते हैं।

अभी जो हमने मस्त सा गीत सुना है वो है तेरा होने लगा हूँ। और यहाँ पे आपके संदेश आए हैं मामुनी से अनिहानिन आज शाम पे हितेंद्रदास ठीक तो ते ते ते ही ओमवेन्या ठीक तो दिक्कत की ना ठीक जोंग लवा पे लवे रेंटीनी कुंग ते ले जामन लो ठीक वेल मई मई सला अचानी मई हिला प्ले खानल थौ थौ अरंतिया इनसे चांग लम देव बॉक्स या तो हितेंद्र दास से संदेश आए है और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग आर जे जी रंतीनी जी आप कभी नमस्ते अगले गीत की ओर बैठे हैं और यहाँ पे अगला गीत रहेगा राता लंबिया तो इस गीत का आनंद लेते हैं।

अभी जो हमने मस्सा गीत सुना है वो है राता लंबिया। अगले गीत की ओर जाने से पहले आपके संदेश की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके संदेश आए हैं मैंग मोई ते से अनिहन लियन संग नमस्ते ड्यूटी नॉमले। अगला गीत इतान ले मोय मुनपुतान रंतिया इतान पोखान हनी बेहाल से तेरो जेललजा मैंग मोई ते और जेल जामारन लंगा अनि हियानिन आज सांग पुई रम ती चुआन सुकुन ला खांगाई था विला दास रम लोटिन नम दंग कपुई ने आइन मानी प्यान पुई चौंग हन पुई थे तुर कपुई ताना दू थे ना ले वी कुंग ते नेन अहुन तका तियाम तलते अति पुई थे ना न रंतिया रंति चुआ कन तुमंगा ओ कन प्लेलिस्ट आते ओमरम चांग नि चुआन रंति चुआ कन तुमंगा। अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला गीत रहेगा दिल की बात। तो इस गीत का आनंद लेते हैं और ये गीत खास करके मैं मोइते आपके लिए है।

अभी जो हमने मस्त सा गीत सुना है वो है दिल की बात सिद्धार्थ के आवाज में, और यहाँ पे अगला गीत रहेगा सुकून अरिजीत सिंह के आवाज में, और ये गीत है खास करके जेललजामा वे नाम तक इलो मन थे नान ले इपॉन छुई थे क्लॉन्ग तक इलो छुई जुम जेल थे नान नी से, तो इस गीत का आनंद लेते हैं सुकून।

प्यार श्रोता, इस समय आ गया है इस प्रसारण के आखिरी गीत का, और यहाँ पे अगला गीत रहेगा असली वाला सुकून और जेल जामा पेशेंस का कहन तेस जवाय मो अल दूसरों तक तक का दोनों सौ गण स्वाग दोनी। तो इस गीत का आनंद लेते हैं सुकून, और ये गीचे खास करके जेल जामा और आप सभी एफ एम लिसनर्स के लिए है, ये जिनको एफ एम जो लौंगा था ते नो मनी दिखन शाहन लौलमा नथोपा FM zoi lo ngai tha te poina mani ti kan sha a vein hun nuam ta kan man the nan du sak na kan lan che wa next kan le play le tur hi in zawai tan kan ni se to is kit kan le te hai.

प्यारे श्रोता, ये एफएम वॉइस ओरिशम लफसात है और मैं हूं आपकी आरजे सांगपुई। फिर वापस आप सभी के लिए इस प्रसारण में हमें शिकार, विक्ट्री और मैं साथी हूं फिल्मों से लिया गया गीत सुनने को मिलेंगे। सबसे पहला गीत रहेगा वास्ते। इस गीत के साथ इस प्रसारण की शुरुआत करते हैं।

0: دفعه تو چند لیره؟
1: یه کیا ہوا؟
2: What happened؟
3: پاور چلا گیا ہوا.
0: اب کیا کریں گے؟ Exactly at 10 a.m. आज मेरा ब्रेकअप हो गया. इसलिए जिसके साथ गाना था वो आया ही नहीं. बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट, वाओ, मेरे शो में मेरा साथी बन गया.

पर अब शायद इस वॉइस नोट ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। I'm sorry. Excuse me.

अभी जो हमने मस्त गीत सुना है वो है वास्ते ध्वनि बनुशली द्वारा गीत है। यहाँ पे सबसे पहला संदेश आए हैं हितेंद्र दास असम से और ये कहते हैं ओनली वर्किंग एंड वर्क। सो आपके संदेश से हमें पता चलता है कि यू हैव बीन बिजी द होल डे, सो आई होप दैट यू विल हैव अ गुड डे अहेड। ओके हितेंद्र दास असम मिंग मोइते अरुण लंगा गुड आफ्टरनून अरुणिया जी आपको भी गुड आफ्टरनून और मिंग मोइते वेन सो अरुण लंका दे उल्लेक अरुण लन सुना ही चुआनी कन हंदु सकंगा अलमोई की जोंग का ये लतलन द सेगमेंट नित्सी अलमा सेंगिन ला पखत कन लन सक ये लन कन रन पल सकंगा अलमोई की जोंग ते पखत रन थंग तुरिन ओ चांस कन पेंग ओ तुना चंगा मिनिट गा छुंगा रन थन छुआनिन आला रिक्वेस्ट ती छुआ सकन तुमंगा अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और यहां पे अगला गीत रहेगा के वास में क्या मुझे प्यार है।

वो था के आवाज में क्या मुझे प्यार है। यहाँ पे आपके संदेश आए हैं जेल अल्जाम से अनिहानियन और यस पी जाइट हम लोग गुड आफ्टरनून और अंतिया जी आपका भी गुड आफ्टरनून और इवान सही दीक्षी ने हे बहन भी तुम को ही क्लियर वक लवा खुद नोक नोक रहेगा मसे ये जाइट हम लोग एम एम फे चुका नहीं चुआ मैं अलावा नहीं आओ अनि हेनिन चनहुन मनवा मोइ बुलचन ना लाजेत जोंग अवन नल सीवे नेक्स्ट सॉन्ग इतान ले कंट्रोल रूम ड्यूटी जोंग जोंग ते ले ड्यूटी ऑफिसर तान ले करानी जी माइ लविन तिन पुंग तो तान पो अरंतिया और रानी जी ती हितवानिन कलविन गाइ बेल लेक लेक सेल जोन अगस बॉय खान मो नु लाद लाइ खान रानी जी आ रानी जी खा कनि वे मन जो आ ये मासे तो नहीं चन मिन कौ दुआ दु तो लवंगे मिन कौ दुआ ngam to lawa mo rani ji han tia han kau tu nei te hi chu acha kom ve chin khop me in pani se control room duty ten in lawai thame tu rangai lai next second play le tur hi jail zaman in tan ran thanga tin ke pon pu kvl ratatan next sa kan play le tur hi nge kan khan sak ve hal ni se yaha pe agla gir rahega meri aashiqui palak muchhal aur arijit singh ke awaz mein

अभी जो हमने गीत सुना है वो है मेरी आशिकी, पलक मुछल और अरिजीत सिंह की आवाज में। यहाँ पे आपके संदेश आए हैं मैं मोई ते से अनियन लियन संग सुतियाई फलस्वान यस बोस फिल्म ला का करण थे। मैं कोई ऐसा गीत गाऊ गाई थाई ला रंटिया तनगाई था थे तुरा गाई ला। हाँ, यहाँ पे अगला गीत रहेगा मैं कोई ऐसा गीत गाऊ और ये गीजे खास करके मैं मोई ते आपके लिए है।

यहाँ पे आपके संदेश आए हैं मिंग मोई तेसे नी हैं लियान सांग कलो में अरंटिया चितिन इल्जत साई लवा लवा लंगा एसपी कलो ngai थाचर चर निया मासे कमेंट दान वा कशे लवा नंग मा कलो कमेंट में यंग से यो ngai थाक नो मा चोंग देव चर चर ला अरंटिया चोंग देव चर चर चो चा कम व्या वा चोंग देव चर चर तो चोन इन एसएमएस लमा एंगे लाइन रन थन ताई माकते मो एसएमएस रन थन ताई माक ते खा आंगाई वे थुंग दोन निया जेलजा मालव लंगा आजे आजे एसपी मो मेंगजे या मेंग मोइते चु अन कोविडीपी न लो सोइ संगे कनि ओ मे अन को मेसेज ले रोल लो टिंग मने दे वेल नि मेला ले थक लु तुखी बाय ला के नि ले छिया लो न्यांग करिंग लो ते रोमिंग मोइते ले दो चु नि से जेलजा मते अंगिन माफ़ने रम लोटे पन रन साइ वेतो न्याम रन साइ छेदो लव ए मैं लेर टॉक लव दे न्यांग तरो अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला गीत रहेगा हम मर जाएंगे तुलसी कुमार और अरिजीत सिंह की आवाज़ में तो इस गीत का आनंद लेते हैं

अभी जो हमने हिट सा गीत सुना है वो है वो चली वो चली, बॉम्बे वाइकिंग्स द्वारा गीत है। यहाँ पे आपके संदेश आए हैं मैंग मोई ते से अनि हियानिन लियानसांग राजू जेल जा मखा अदो हुआर नि जो केवा अला कसोई सकती दोन कप मही रनती अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगला गीत रहेगा तुम ही हो, और ये गीत जो आप सभी एफएम लिसनर्स के लिए है।

प्यार श्रोता, ये एफएम जोर शोर दशमलव सात है और मैं हूँ आपके आरजे सांपुई। फिर वापस आप सभी के लिए इस प्रसारण में हमें लीडर साथ साथ और कर्मा फिल्मों से लिया गया गीत सुनने को मिलेंगे। सबसे पहला गीत रहेगा वो पहली बार, शान द्वारा गीत के साथ इस प्रसारण की शुरुआत करते हैं।

वो था पहला नशा, जो जीता वही सिकंदर फिल्म से लिया गया गीत है। हमारी तरफ से एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। आकाशवाणी आई जोल सुन सोम पथुम थरुक सांगनी सोमनी परुक इनरुनी सोनुदार खतले मिनिट सोम लेदार नि इनकारा कुम उपातेताना दानंगा अंदिक ना लेसन वो चुंचांग इंजीर तीरना ती थु पुई मंग इन लाइफ ऑन इन प्रोग्राम अब वाट सही दोना मल सोम दोंग ज्वाल एडवोकेट कनान वेंग ले सील रिन पुई एडवोकेट मिशन वेंग आई जोल मीटेन हुन अनरन मंगांग मोबाइल नंबर 9862476730 आ ह्यान हे मिहुन सोंग ह्यान एसएमएस एमो इन ब्याक पोथे अनियांग। यहाँ पे आपके संदेश आए हैं जेल इल्जाम से अनियान आरजे एसपी त्लुंग तकिन हो अंग से एसपी इमो कपू के वाल चू त्लुंग लुया अतला हे अपील वंग वंग अरुण लंग ले सब जो छीन बोका अरुण लंग अरुण लन सुना ला कथु थे तीन अपील ले छीन जन मोहर गंग मई नेक्स्ट सॉन्ग कपू के वाल त्लुंग लुई पिल मेक तान हो रंग तिया इन छानदोन तान खान नि से तेरो हे ला पखत छ हिंदी ला बिक चो रन ति छान हुन कन नै तो दोना व इन होना एफएम जो ओइ लंगाई लुवा बिक इन हिंदी सेगमेंट पो अ तो थिंग मिन लो टेल पुइ तु ते कन तान इन लु एम एम आ एंगे नेक्स्ट आ यान इन इंग्लिश सेगमेंट पो लम दोना अ तो थिंग हुन मिन रन मन पुइ तो रिंग कन जवाई खान कन सोम सेउनी वी कुंग ते अरन लंगा नि हन बिगिनिंग ऑफ द एंड ti mizo changa zi ani lo chia ve ro ti ya ai ming lan te po ka lo mu wa ma se ka chia ri lo me nga a vin hun in hun lu tak se

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। बैठक में देशभर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल हिस्सा ले रहे हैं। रेल सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेब्स ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
0: इस कार्यक्रम में जयपुर के सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क नहीं लगेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेजा है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा में भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C-295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एयरोस्पेस विनिर्माण के देश में बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम जॉय पर। आपके साथ जुड़ी है आरजे उमदे। समय हो रहा है हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:30 बजे और ये हिंदी गानों को सुनने और सुनाने का सिलसिला जारी रहेगा आधे घंटे तक, यानी कि 6 बजे तक मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी और आपको हिंदी गाने सुनाती रहूंगी। सबसे पहला गाना जो मैं आपको इस भाग में सुनाने वाली हूँ वो है मैंने पायल है छनकाई, 90s के दौर का एक खूबसूरत एल्बम का एक और खूबसूरत गाना आप सभी के लिए फाल्गुनी पाठक की आवाज में।

मैंने पायल है छनकाई। आवाज हमने सुनी फाल्गुनी पाठक की। आगे बढ़ते हुए हम आपके मैसेजेस पढ़ेंगे। जिला जामा का मैसेज है, हेलो आरजे उमते, नमस्ते, गुड इवनिंग। आपको भी गुड इवनिंग और नमस्ते। दंगदाये मेमनु दंगदाल दंगदाई फोन लगो सोया सोल दंगदाले मेमनु जनिन हिया निरन कल्पा इन बोसाइबे पुमिंग जात तक इरन दल अब्लिक एले अंगि मो ओ अरन दिनी पखत मकरन एला ओ ए फे रंग छनि छेफन लवंग कतिल चारी। नेक्स्ट सॉन्ग काई ड्यूटी पुई आरजे जवी आरजे ओमेगा सांग ते ओ अनि ले लो आजे मा मोय ते नेनि बथुम तान ले जौरम रिमोय एफएम जोय गाय थतु ते तान पो जनि।

ये था कहो ना प्यार है मूवी का एक और खूबसूरत ट्रैक न तुम जानो न हम नाते पाबिल खोथिर ने लिखा है आज हम ते थाई लमसे बैले जनी नि दुती नो तका उनि मनते ना दु सकना लानचुंग छ इन इला प्लेले तुर खा मे मोयते आ पार पारिपु ओमिका सांगते आ विकुंग लेरा चियांग दो लेकिन छारा ओ विकुंग लेरा जेलर जाम ले रे पो लेतान कलाने रो दिनिंग हकते पायन से चियांग लम ले मेत्रो आगे बढ़ते हुए हम सुनेंगे कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन की आवाजों में ए दिल लाया है बहार जिस पर प्रीति जिंटा को फिल्माया गया था. आइए सुनते हैं उस खूबसूरत गाने को और उसके बाद हम सुनेंगे दिल का रिश्ता का टाइटल ट्रैक.

ये था कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन की आवाजों में ए दिल लाया है बहार, और मूवी का नाम है क्या कहना। आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे आपके मैसेजेस, और ये मैसेज है वी कुंगतेया, इन्होंने लिखा है गाकते अपा लेर चाक लेर गम तो लौ अन्नु पोन फेन सुछीन छुम कनु बेर चन चंग मेक अनिखा rau pui khop mai ron di di ron kap let ve kap te pa hen ding ron cha nang kan la ven ze nang ki jeng ma ka sei lo ne ka bel la wa ze le ren thei hian a je i play le tur kha ka passenger te numa pui le a fa te tan hian ka lo thang ve o e kai hun nuam tak in nei thei nan du sang na ka la na chawai la wai thachar cha don ne moi tok tok ka kan play ze rang आगे बढ़ते हुए हम सुनेंगे दिल का रिश्ता मूवी का टाइटल ट्रैक।

दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। दोस्तों आपको मजा जरूर आ रहा होगा मेरे गानों को सुन के। एक और गाना हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और मैसेज है मैं पढ़ लूंगी। खाते पा बिल्कुल ने लिखा है आज हमते वी कुंगले अर्थ चुमो नुला प्यान न ले मिल था मो नु नो प्यान दोजल मे खानिया तिहान अम्मा ngang khai ngô ta ran la ti mai ang ati ni mo ta ran la ti mai ang ati from hak te pa bil ko thien a khai lo in kap zel te o i kani du sak chung chan in ka te hi chu poi lawa kan ngai o in hola wira akhri gana hum sunenge jate jate kuch kuch hota hai aur isi ke sath मैं आज हम थी आपसे इजाजत चाहूंगी। वापस मैं आपसे जुड़ूंगी बहुत जल्द 8:02 पर। कहीं मत जाएगा क्योंकि ठीक इसके बाद आज मामोई आपके लिए लेकर आने वाली है मिजो गाने। सुनते रहिएगा एफएम जॉय के साथ।

0: आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पाराशर।
1: नमस्कार। अब उपलब्धियों की बात होती है तो साल दर साल बात होती है। 12 साल एक लंबा समय होता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। एक के बाद एक कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। एक रिकॉर्ड जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी, अब अगर हम बात करें कि कितने समय के लिए और कितने दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर रहे, तो वो रिकॉर्ड भी टूट रहा है। लेकिन सिर्फ बात इन रिकॉर्ड्स की नहीं है, बल्कि बात हो रही है क्या ये नया भारत कुछ विकास लेकर आया, विकसित भारत का नारा जो है वो साकार हुआ। और किसानों के लिए बहुत बात हो रही है, क्या किसान वाकई में खुश हैं, क्योंकि किसानों से सीधे जो जुड़ाव रखते हैं वो खास मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको मामा भी कहते हैं लोग, अब आप पहचान ही गए होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद आपका।
1: अब मैं आपको मामा जी तो नहीं कहूं, लेकिन मैं आपको नेता के तौर पर पहले शुरुआत करती हूं। गर्मी बहुत है, किसान खुश है?
2: किसान खुश रहे इसके लिए सरकार दिन और रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी, उनको बहुत बहुत बधाइयां, उनका अभिनंदन। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। और मैं अभी 2 साल से उनके साथ मंत्री हूं। मेरे जैसे कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उनको बहुत बहुत बधाई।
1: अब क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी से ही शुरुआत की है, मैं अपने हाथ में आपकी किताब भी लेकर आई थी, अपनापन। ये किताब आपने नरेंद्र मोदी संग आपके अनुभव, तो 2 साल से तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप उनको देख रहे हैं, आप उनके

0: कैबिनेट का हिस्सा है, सरकार में एक अहम पद पर हैं आप, लेकिन आपने जो इस किताब में अपनापन बताया है, आजकल अपनापन ये शब्द ही इस्तेमाल होना ऐसा लगता है खत्म हो गया है। कोई रणनीति की बात करता है, भारी भरकम शब्दों की बात होती है, ये अपनापन क्या जुड़ाव है मोदी जी के साथ?
1: भारतीय संस्कृति का मूल है एक ही चेतना हम सब में है, इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं, आत्मवत सर्वभूतेषु। और यह भाव मैंने सदैव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में और उनके काम में देखा। अपनापन अपने सहयोगियों के लिए, अपनापन अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनापन देश की संपूर्ण जनता के लिए, अपनापन पीड़ित विश्व मानवता की सेवा के लिए। और इसलिए जब कोविड जैसी महामारी आती है तो वैक्सीन केवल भारत की जनता को नहीं लगती, 100 अलग अलग देशों के लोगों को भी लग जाती है। अगर प्राकृतिक आपदा किसी दुनिया के दूसरे देश में आती है तो सबसे पहले भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने हाथ आगे बढ़ाता है सहायता और सहयोग के लिए। लेकिन ये अपनापन केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, प्राणियों के लिए भी अपनापन। और इसलिए चाहे टाइगर हो चाहे चीता हो, वो सुरक्षित रहे, पुनर्वास हो, इसके प्रयत्न किए जाते हैं। अपनापन पेड़ पौधों के लिए, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम जैसा अभियान चलता है, पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की कोशिश होती है। अपनापन नदियों के लिए, और इसलिए गंगा जी से लेके बाकी सब नदियों को बचाने का अभियान चलता है। अपनापन पशु पक्षियों के लिए भी, और पेड़ पौधों के लिए भी, नदियों पर्वत पहाड़ों के लिए भी, और ग्रह नक्षत्र तारों के लिए भी। चारों तरफ अपनेपन का भाव दिखाई देता है, और वो अपनापन का अनुभव साथ काम करते हुए मैंने स्वयं भी किया है और सबके लिए अपनापन देखा, इसलिए किताब का नाम अपनापन। इससे आत्मीय और कोई शब्द नहीं मिला मुझे।
0: आपने कई जगह ये जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे पल थे जिसमें कई बार आप भावुक हुए और आपने उनको याद किया नरेंद्र मोदी को। जैसे आपने बताया कि 23 के चुनाव के समय तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने सीधे आपको फोन किया और उन्होंने कहा मैं किसी नेता से नहीं, अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। ये जो एक कनेक्ट है मोदी जी के साथ, यही वो कनेक्ट है जो जनता के साथ भी महसूस होता है आपको?
1: सबके साथ ही, मैं अकेला ऐसा नहीं हूं, ऐसे अनेकों साथी होंगे। जब ऐसा लगा कि उनको अपनेपन की जरूरत है तो उनसे किसी पद के कारण बात नहीं की, स्नेह प्रेम और आत्मीयता से बात की। और जब कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि अब तो मामा का श्राद्ध हो जाएगा और अलग अलग तरह की चीजें चल रही थी, तब उनने फोन करके कहा न चुनाव की बात, न मुख्यमंत्री से बात, अपने शिवराज से बात। यही तो अपनापन है।
0: शिवराज जी, अब क्योंकि हम 12 साल की बात कर रहे हैं, 12 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस सरकार की क्या मानते हैं?
1: प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत से अपना एक एक क्षण देश की और जनता की सेवा में लगा रहे हैं। और अंतर अगर देखना हो तो हम नहीं कहते, जमाना कहता है। एक जमाना वो था जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कोई मान सम्मान और स्थान नहीं मिलता था। भारत को, हमारे प्यारे देश को, एक दिन आज का है जब जहां देखो पूरे सम्मान के साथ भारत का नाम लिया जाता है। हमारे देश के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। मैं विश्लेषण करूं क्या हुआ है तो घंटों लग जाएंगे, उपलब्धियां कितनी हैं, लेकिन देश आज पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ दुनिया में खड़ा है और कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत।
0: ये तो वैश्विक स्तर की बात हो गई, लेकिन अगर अपने देश में सबसे बड़ी उपलब्धि देखें, जैसे आपको मामा, जो मैंने कहा इसलिए जाना जाता है कि बहनों, माताओं और सबके लिए आपने ऐसी स्कीम, लाडली बहना हो या तमाम स्कीम्स हो, कि पूरे देश ने बाद में उसको फॉलो किया, ऐसी क्या बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की जो एक आपको अगर गिनानी हो?
1: देखिए, एक तो संकट है
0: जिसको इतिहास याद रखेगा,
1: 25 करोड़, देखिए इतिहास को याद रखने वाली भी चीजें कही है, चाहे धारा 370 हो, अयोध्या में राम मंदिर हो, विकास से विरासत के एक नहीं अनेकों काम हो, नक्सलवाद से देश को मुक्त करना हो। कौन सोचता था कि यह दिन आएगा कि बस्तर की गलियों में आज शिक्षा से लेके रोजगार से लेके शांति की बयार बहेगी, कौन कल्पना करता था? अगर वो गुनाऊंगा तो संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन आम जनता की दृष्टि से अगर देखें, बहनों की बात करें तो 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, इज्जत घर जिनका नाम दिया था जनता ने, 10 करोड़ हमारी ऐसी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सम्मिलित है जिनमें से 3 करोड़ हमारी दीदियां लखपति दीदी बन गई है, गरीबों के 4 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके हैं। आप किसानों को अगर देखें तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा राशि किसानों के खाते में सीधे डालने का काम हुआ है। मैं अगर गिनाऊंगा तो इतने काम हैं कि समय कम पड़ता है। तो गरीबों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, हमारे नौजवानों के कल्याण के काम सोचने का

0: मामला हो, गरीब, किसान, महिला, नौजवान, सबकी प्रगति और विकास के लिए अनेकों कदम उठे हैं और आप देखेंगे कि जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है।
1: शिवराज जी, आप इतने अनुभवी नेता हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि एक साल के अंदर सरकार गिरने वाली है? LOP तो ऐसा ही मानते हैं राहुल गांधी, उनका कहना है एक साल भी नहीं चलेगी सरकार।
0: बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है।
1: नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
0: ये कौन से ज्ञान चक्षु है उनके पास, दिव्य दृष्टि है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन अभी तो 2029 आने वाला है, 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में, और 2029 के बाद 2034 जीतेंगे, और 2034 के बाद 2039 भी जीतेंगे। वो ख्याली पुकाओ पकाना बंद करें, मुंगेरी लाल के सपने ना देखें।
1: बच्चों से आपका जुड़ाव काफी ज्यादा है, मामा सब कहते हैं। नीट एग्जाम को लेकर के एक अलग तरीके का विवाद पैदा हुआ है, बात हो रही है कि भाई क्या सरकार सही कर रही है?
0: हम बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, कोई अन्याय नहीं होने देंगे। जैसे ही अनियमितता का पता चला, धर्मेंद्र जी ने तत्काल कदम उठाया, परीक्षा निरस्त की गई। दूसरी परीक्षा की तिथि 12 मई के बाद 15 मई को तत्काल घोषित कर दी गई, फीस लौटाई गई, अगली परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, और संपूर्ण व्यवस्थाएं ऐसी बनाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है कि जिससे कहीं कोई गड़बड़ और दिक्कत ना हो। CBI को मामला दिया गया, अपराधी कई पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। जो सारे कदम उठाए जाने थे वो हर कदम उठाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी भी लगातार सजग और सचेत हैं, पहले भी पेपर लीक होते थे, इतनी तत्परता से कब कार्रवाई होती थी, लेकिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और एक के बाद एक जरूरी कदम उठाए गए।
1: आपने जो बात कही पहले भी पेपर लीक होते थे, तो ये नैरेटिव की लड़ाई में क्या पीछे रह गए हैं कि ये बात सही से सामने नहीं आ पा रही है कि पहले और अब में ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं?
0: ये है कि पहले कुछ नहीं होता था, अब कठोर कार्रवाई हुई है और जहां भी गैप मिला उसको ठीक करने की, भरने की कोशिश की गई।
1: मतलब बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा?
0: सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे देश का भविष्य हैं, बच्चे हमारी सबसे बड़ी दौलत है, किसी भी कीमत पर उनके साथ ना तो अन्याय ना खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, यही सरकार का संकल्प।
1: क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भारत है इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है? क्योंकि एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है, एक नैरेटिव पूरा सेट करने की कोशिश हो रही है।
0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए और वो कह रहे हैं गरीब गरीब होते जा रहे हैं।
1: नहीं तो हकीकत क्या है, इसका जवाब आप कैसे देंगे ऑपोजिशन?
0: हकीकत तो यही जनता जान, देखिए हकीकत है पश्चिम बंगाल, हकीकत है बिहार, हकीकत है दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह अपवाद इक्का दुक्का छोड़ के भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त कर रही है, NDA शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है। इसका अर्थ सीधा ये है कि जनता सरकार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है।
1: इसमें वोट चोरी का कोई रोल नहीं है?
0: नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वोट चोरी होती तो तमिलनाडु भी जीत जाते।
1: नहीं लेकिन अब देखिए, अब ज्ञानेश कुमार जी को लेकर के भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि वोट चोरी है, और फिर जहां जहां बीजेपी जीत रही है वहां वहां पर विकसित भारत की बात नहीं हो रही, वहां वहां पर नैरेटिव वही आ जाता है, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है या फिर हिंदू मुसलमान। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी से यही बात हो रही है।
0: केवल भारत का विकास है और जनता का कल्याण, ये दोनों काम दिन और रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, इसलिए जनता साथ खड़ी है। उपलब्धियां तो मैं कई घंटों आपको गिना सकता हूँ
1: सर, लेकिन नेहरू जी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जो कि जब भारत आजाद हुआ स्वतंत्र भारत के बाद की नींव रखी, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दोनों के इस अंतर को आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए कौन कितने समय प्रधानमंत्री रहा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन ने कैसा काम किया। एक जमाना था जब भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। PL 480 जैसा गेहूं, लाल गेहूं, जिसको मतलब जो इंसानों के खाने के लायक ही नहीं था, वो हम इंपोर्ट करते थे। उस जमाने में विकास की दृष्टि नहीं थी। कई ऐसे फैसले हुए जिनने देश और देश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचाया। सिंधु जल समझौता ही अगर हम देखें, आज वो पानी हमारे काम आ रहा है जो बह के पाकिस्तान जाता था। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 24 घंटे, मतलब मैं तो कहूंगा कि 24 घंटे में से भी हर क्षण, हर मिनट और हर सेकंड राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। निरंतर काम, राष्ट्रहित सर्वोपरि, जनहित सर्वोपरि, इसी भाव से निरंतर काम चल रहा है। और चाहे वो देश के विकास का काम हो, इंफ्रा का सवाल हो, गरीबों के कल्याण का सवाल हो, किसानों के उत्थान का सवाल हो,

0: नौजवानों के बेहतर भविष्य के निर्माण का सवाल हो या महिला सशक्तिकरण का मामला हो, आप चारों तरफ देखेंगे कि एक के बाद एक अनेकों निर्णय हो रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं और वो जनता की जिंदगी बदल रहे हैं।
1: शिवराज जी, आप तो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ हर दूसरे दिन आप देश के किसी ना किसी राज्य में होते हैं, अलग अलग जगहों पर। लोग आपसे ये बात करते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या एलपीजी के दाम की बात पूछते हैं क्या लोग?
0: आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिए, मिडिल ईस्ट के संकट के बाद दूसरे देशों में कितने दाम बढ़े हैं और हमारे यहाँ कितने दाम बढ़े हैं। जनता बहुत समझदार है, हर परिस्थिति जनता के सामने है। मिडिल ईस्ट के संकट को भी जनता अच्छी तरह से पहचानती और समझती है, और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उससे देश के सामने जो बड़े खतरे और संकट हो सकते थे उनसे निपटने में मदद मिली है और जनता ये सच जानती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का संकट को पहचानना और पहचान के रास्ते निकालना, अभी जो उन्होंने अपील की पिछले दिनों और अपील की, उन कई लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया। कोविड से जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निपटे, अगर कई बार मैं सोचता हूं तो मतलब मन कांप जाता है कि मोदी ना होते तो क्या होता। दो दो वैक्सीन 9 महीने के अंतराल में बनकर लग भी गई, केवल हमारे देशवासियों को नहीं लगी, दुनिया के कई देशों के लोगों को भी लगी। और जिस ढंग से जनता कर्फ्यू, थाली ताली, दीपक जलाओ, आप एक के बाद एक कदम के बारे में सोचिए। जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेनें चली और खाली जो टैंकर थे वो वायुसेना के हवाई जहाजों से वापस भेजे गए। जिस ढंग के कदम उठे, कोई कल्पना करता है क्या? अब कोई तो कोविड में भी आनंद देखे कि जनता परेशान है और वो आनंद ले। अगर विपक्ष की मानसिकता हो तो मैं उनकी बुद्धि को मैं क्या कहूं। इसलिए हर संकट में अवसर ढूंढना राजनीति के ये गलत है। हर संकट का मुकाबला भारत ने बहुत मजबूती से किया है। परिस्थितियां बनती है तब कुछ निर्णय होते हैं, लेकिन देश लगातार आगे बढ़ता है।
1: मैंने पता किया, मुझे पता लगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी, आपने उसी दिन तुरंत अपने ऑफिस में कर्मचारियों को सबको बुलाकर उनको बताया था कि अब क्या करना है, कैसे प्रधानमंत्री की अपील का एक तरीके से पालन करना है। आपने भी कुछ टिप्स अपने ऑफिस में दे दिए थे लोगों को?
0: तत्काल देखिए, मैं तो उनके हर भाषण को ध्यान से सुनता हूँ। पहली बार जब मैं मंत्री बना उनके नेतृत्व में, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। मैंने तुरंत वहां से उतरते ही लाल किले की प्राचीर से अपने दोनों सचिवों को फोन किया, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, और कहा कि कल सारे कर्मचारी अधिकारी इकट्ठे होंगे, बाकी सब वर्चुअल जुड़ेंगे। और हम सब ने खड़े होकर संकल्प लिया राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए कि हम भी 3 गुना ताकत से काम करेंगे, प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हम पीछे कैसे रहे। उन्होंने इस बार कहा कि सरकार फाइल में नहीं, जनता की लाइफ में दिखनी चाहिए। हमने तुरंत नियम और प्रक्रियाओं के सरलीकरण का एक व्यापक अभियान छेड़ा कि जनता को कोई तकलीफ ना हो किसी भी कीमत पर। जो अभी उनकी अपील आई उस पर तुरंत हमने अमल करते हुए, कैसे हम कार पूलिंग कर सकते हैं,
1: अच्छा,
0: कैसे विदेश यात्रा अनावश्यक बिल्कुल नहीं करनी है, डीजल पेट्रोल कैसे बच सकता है, उसके एक एक कदम हमने उठाए जिनमें मैं भी शामिल हूँ, और मिलकर उन पर अमल करने की कोशिश की।
1: तो आप भी कार पूल करते हैं अगर बाहर जाते हैं तो?
0: हम बैठक में जाते हैं कैबिनेट की, और दूसरे मंत्री जा रहे तो हम साथ बैठ के जाते हैं। तो काय को हम दूसरी कार ले जाएं, जब पिछली बार बैठक में हम 3 मंत्री एक साथ गए थे कार।
1: अच्छा, देखिए ये सब खबरें बाहर नहीं आती है, ये पता ही नहीं चलता किसी को,
0: और इसलिए कोशिश करते हैं कि यथासंभव जनता के काम को नुकसान ना पहुंचाते हुए हम जो भी बचत कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें।
1: शिवराज जी, AI नैनो की भी बहुत बात हो रही है, उसको लेकर थोड़ा सा विजन बताइए कि क्या विजन है और इससे किसानों को किस तरीके से, मतलब अगर कुछ दिक्कत है तो सामना कैसे करें और फायदे क्या पहुंच सकते हैं?
0: देखिए, हमको एग्रीकल्चर के माध्यम से अगर आप बात करते हैं तो 3 बड़े लक्ष्य हमारे। एक, देश की खाद्य सुरक्षा में सुनिश्चित करना है। दूसरा, पौष्टिक आहार जनता को उपलब्ध कराना है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इन दोनों से भी किसान की आजीविका और रोजगार सुनिश्चित करना है। और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और इसलिए AI का उपयोग भी हम कैसे हम कर सकते हैं, मैकेनाइजेशन का काम कैसे करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उत्पादन की लागत घटा सकते हैं, इस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। एक नहीं, अनेकों प्रयोग हो रहे हैं। जैसे AI के माध्यम से ही अगर आप बात करेंगे,
1: जो अल नैनो की हम बात कर रहे हैं,
0: अलनीनो के भी हम बात करें, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। हमने एक भारत विस्तार, हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर कोई भी किसान पूछता है अगर कोई सवाल कि मेरी फसल की पत्ती पीली हो रही है, ऐसे लक्षण है, अब मैं क्या करूं, तो तत्काल उसको जवाब मिलता है कि फलानी बीमारी हो सकती है, आप ये दवाई डालिए। ये AI का इस्तेमाल है। मोबाइल

0: लेके आप खेत में खड़े हो जाएं तो ये पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व है और हमको कितनी खाद डालनी चाहिए, और नहीं तो बिना मतलब के जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी डाले जा रहे हैं, खर्चा भी बढ़ता है, उत्पादन में भी कोई लाभ नहीं होता। तो एआई के ऐसे अनेकों उपयोग है जो निरंतर कर रहे हैं। अभी अल नीनो का संकट दुनिया पे बरकरार है, केवल भारत नहीं, दुनिया के मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं कि अल नीनो के कारण यहाँ बारिश कम हो सकती है। हमने वो 197 डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की है जहाँ कम बारिश होने की संभावना है, और हमने एआई के माध्यम से उन जिलों को न केवल पहचाना है बल्कि उनका कंटेंजेंसी प्लान बना रहे हैं कि वहां अगर ऐसी परिस्थिति बनी है, संभावित है, क्योंकि मौसम के बारे में 100% कोई नहीं कह सकता, संभावित है, तो उनका कंटेंजेंसी प्लान हमने बनाया कि उन जिलों में कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन से बीज इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी किस्म बेहतर रहेगी। अगर बारिश में तो स्पेल में लंबा गैप हो गया, एक दिन बारिश हुई और फिर 15 दिन बाद 20 दिन बाद बारिश होती है, तब हमको क्या करना चाहिए, तो सारी चीजों का आकलन करके और उसकी एआई की मदद से हम उससे कैसे निपटेंगे इसका प्लान भी हम तैयार कर रहे हैं। मध्य भारत के कई इलाकों में कम बारिश की संभावना है तो उनमें हम क्या करेंगे उसका प्लान हमने तैयार किया है। हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी का सहारा हम ले रहे हैं। हर सप्ताह मैं मॉनिटरिंग करता हूँ, रोज हमारे अफसर मॉनिटरिंग करते हैं कि आज मानसून कहाँ पहुंचा, कितना पहुंचेगा, किस गति से बढ़ेगा, कहाँ कम संभावना है, कहाँ ज्यादा संभावना है, तो सब चीजों का आकलन करके हम फैसले कर रहे हैं।
1: आपको लगता है शिवराज जी कि बंगाल के इलेक्शन ने ये तुष्टीकरण और ये वोट बैंक की राजनीति को काफी हद तक खत्म किया है?
0: देखिए, सीधा तुष्टीकरण अब ये देश स्वीकार नहीं करेगा, वोट बैंक की राजनीति ये देश स्वीकार नहीं करेगा। आज गर्व के साथ हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक सुपर ह्यूमन है, भारत के लिए भगवान का वरदान है, उनके नेतृत्व में जो हम कर रहे हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, घुसपैठ जैसे मामले हो, प्रगति और विकास और जनता का कल्याण तो है ही, बल्कि वसुदेव कुटुंबकम के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय सर्वोपरि मानते हुए, जो विश्व हित की भी सोचता हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है।
1: शिवराज जी, बहुत बेबाक तरीके से आपने बात की। एक ऐसी बात नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि हम 12 सालों पर बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आप हमेशा उनसे सीखते हैं और उनकी बात को याद रखते हैं, क्या वो एक स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, या सॉफ्ट हार्टेड हैं, क्या हैं?
0: केवल एक ही घटना मैं सुनाऊंगा। एक बार मैंने उनके सामने, मैं और वो दोनों थे, उनके कामों की प्रशंसा की कि ये बहुत अच्छा हुआ, देश उसको बहुत पसंद करता और हमारे मन में भी आपके प्रति श्रद्धा का इसलिए भाव है, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, मैं प्रशंसा से नहीं, मैं काम से प्रसन्न होता हूं, जो काम करेगा उसको कंधों पर बैठा के मैं नाच सकता हूं, लेकिन प्रशंसा मैं नहीं सुनता, केवल काम पसंद करता हूं। और वो चीज मुझे हमेशा ध्यान में रहती है, काम करो, काम करो, काम करो, चलते रहो, चरे वेती चरे वेती चरे वेती, अपने देश के लिए काम करते रहो, अपनी जनता के लिए काम करते रहो, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है।
1: बहुत आपने एक हम सबको भी एक सीख दी चरैवेति चरैवेति के इस मंत्र के साथ, और यही मंत्र होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ इस खास बातचीत।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पाराशर। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत। अब सुनिए संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत।
3: छब्बीस मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। उस समय उन्होंने सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि एक नए भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दी, और तब से लेकर के पिछले 12 सालों में चाहे विकास की बात करें या सुशासन की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें या फिर गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत की बात करें, लगातार मोदी सरकार पूरे देश में काम कर रही है। और गुलामी की मानसिकता की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, कैसे आगे बढ़ रही है पूरी आधुनिकता के साथ में, ये भी हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत की संस्कृति अपना परचम लहरा रही है। और केंद्र सरकार का बराबर साथ दे रही है, केंद्र सरकार का मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय। तो खास मेहमान है

0: संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में।
1: धन्यवाद।
0: भारत किस तरीके से जो उसकी संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो उसका पुनः जागरण हो रहा है। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवाहन गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत, तो उसको संस्कृति मंत्रालय कैसे आगे लेके जा रहा है?
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिया वो यह है कि भारत की जो सभ्यता है वो युगे युगीन है, वो युगों युगों से चली आई है और वो अटूट है। बीच में ऐसे कालखंड आए जिन कालखंडों में इस अटूट सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की गई या जो इस सभ्यता के स्मारक थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई, पर इन सब प्रयासों के बाद भी जो हमारी युगे युगीन भारत की सभ्यता है वो अनावृत चलती रही। इस अध्याय को पुनः स्थापित करने के लिए और जो गुलामी का कालखंड रहा उसकी याद को समाप्त करने के लिए या उसकी याद को एक ऐसे पृष्ठभूमि में रखने के लिए जिससे कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारी ज्ञान परंपराएं, उनको हम पुनः स्थापित कर पाएं और हमारे जो नागरिक हैं, खासकर जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनके समक्ष ला पाएं, उसके लिए बहुत सारे कदम भारत सरकार ने उठाए। बहुत सारे जो हमने काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जो कॉलोनियल समय में भारत की सेक्रेटेरिएट थी और जहां से भारत के राज्य का संचालन अंग्रेज करते थे, उस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक नया म्यूजियम बनाने की घोषणा की जिसपे हम काम कर रहे हैं, वो भी म्यूजियम युगे युगीन भारत के नाम से। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, अगर आप लॉर्ड मैकले ने जब भारत की एजुकेशन पॉलिसी बनाई कॉलोनियल के समय में, उन्होंने कहा कि यूरोप की किसी भी लाइब्रेरी में जो एक शेल्फ की किताबें हैं वो भारत की पूरी ज्ञान परंपरा से ज्यादा बेहतर हैं, उसको जो वो भावना भारत में लाने की कोशिश की गई कॉलोनियल राज द्वारा, उसको मिटाने के लिए और भारत की जो अपनी ज्ञान परंपरा है उसको पूरे विश्व के सामने लाने के लिए और भारत के नागरिकों के सामने लाने के लिए ज्ञान भारतम का काम प्रारंभ हुआ है, जिसमें जो हमारी हस्तलिखित मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारी पांडुलिपियां हैं, जो विभिन्न विषयों पे हैं, खासकर जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे हैं, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हीलिंग सिस्टम्स हो, मेडिसिन हो, जो चिकित्सा के साथ साथ जो सर्जरी की डेवलपमेंट थी उसके ऊपर जो हमारा काम था, उस सबको अब हम पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं, एक नेशनल रिपोजिटरी बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल थे हमने उनको पुनः निर्मित करते रहे, बार बार तोड़ते रहे और हम निर्मित करते रहे, इसको भी भारत की याद में दोबारा भारत के नागरिकों के समक्ष लाने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हम मना रहे हैं।
0: सर, आपने युवा पीढ़ी की बात कही, जहां किसी भी देश का हम कहते भी हैं कि अगर कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसका जो आधार होते हैं उस देश के युवा होते हैं, और जैसा कि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति खत्म कर दीजिए, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपने अभी जिक्र करा शिक्षा में भी बदलाव हो रहा है, और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि जब पूरा विश्व समझने की कोशिश कर रहा था कि सभ्यता होती क्या है, उस वक्त हम सभ्यता के धरातल पर दौड़ रहे थे, और उसको भी संस्कृति मंत्रालय अब आगे लेके जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
1: भारत की ज्ञान परंपरा का एक बड़ा सेंटर नालंदा विश्वविद्यालय था, जो प्राचीनतम, जो विश्व में अकेला ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय था जिसके साथ पश्चिम भारत में तक्षशिला था। नालंदा की जो परंपरा थी उसको इसी कालखंड में जब भारत पे हमारे पे अतिक्रमण हुए, हमारे पे बहुत सारे आक्रमण हुए, उस समय नालंदा पे भी आक्रमण हुआ, उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसका पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास हुआ, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब नालंदा की जो ज्ञान परंपरा है उसका पूरा रिवाइवल हुआ है। वहां पे नालंदा बिहार विश्वविद्यालय चल रहा है जिसमें जो बुद्धिस्ट और पाली लैंग्वेज और पोटी लैंग्वेज का जो लर्निंग है वो होता है, इतिहास, संस्कृत, और साथ में जो सांस्कृतिक धरोहर नालंदा की थी, जो ज्ञान परंपराएं थी उसके ऊपर वहां पे शिक्षण का कार्य होता है, उस पर रिसर्च का कार्य होता है। उसी तरह जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन को साथ जोड़ के एक बहुत बड़ा कार्य इस सरकार द्वारा इस समय में किया गया है।
0: आपने अभी जिक्र किया राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है या जो हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता था, मतलब आज की जेंजी की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा जानते हैं, रादर हम अपनी बात करें अपने समय में हमें नहीं पता था, तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से अगर ये दोबारा निर्माण किया जा रहा है या फिर जो स्थानों के नाम राष्ट्रीय सेनानियों के नाम पर रखे जा रहे हैं, क्या उससे कोई बदलाव आएगा और एक जो सभ्यता है वो पुनः जागृत होगी?
1: बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब कॉलोनियल शासन था तो अंग्रेजों के जो उस समय के प्रशासक थे या उस समय के गवर्नर जनरल थे या वाइसरॉय थे, उनके नाम पे बहुत सारे भारतीय स्थानों के नाम रखे गए, जैसे पोर्ट ब्लेयर था जो अब श्री विजयपुरम है, जो वहां पे द्वीप थे वो अब नेताजी द्वीप के नेताजी के नाम से द्वीप हुआ, जो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनमें कॉलोनियल लिगेसी थी उनको परिवर्तन करके हमने अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको पुनर्जागृत किया है। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक स्थल है या जो पुरातत्व स्थल है उनको हम अगर विकसित करते हैं और उनके ऊपर हम विजिटर एमिनिटीज अच्छे से डेवलप करते हैं और खासकर वहां के जो इंटरप्रिटेशन सेंटर है और वहां पे अगर हम ऑडियो विजुअल गाइड के साथ एआर वीआर एक्सपीरियंस क्रिएट करके हम पूरा नैरेटिव जो वहां पे जो हमारे यूथ है हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं वो जाते हैं, तब उनको वो समझ में आएगा कि वास्तव में इतिहास में इन स्थानों का क्या महत्व था और क्या हमारी सिविलाइजेशन की हमारी सभ्यता की ऊंचाई थी प्राचीन समय में। जैसे लोथल में एक बहुत बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम स्थापित हो रहा है, ये लोथल 5000 वर्ष पुरानी साइट है। 5000 वर्ष पहले यूरोप अमेरिका में तो कुछ भी नहीं था, परंतु भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी और उस सभ्यता का संपर्क था विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ और डॉकयार्ड था, पूरा मैरीटाइम सिस्टम था, वेयरहाउसेस थे, ट्रेड का सिस्टम था, सील्स थी, करेंसी थी, तो एक पूरी विकसित सभ्यता थी जिसको उजागर अगर हम अच्छे से प्रॉपरली इन साइट्स को डेवलप करके करते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी को उसकी उसका महत्व और उसकी ज्ञान की जो जो जो ज्ञान की प्राप्ति होगी उससे ना केवल नेशनल प्राइड डेवलप होगा बल्कि जो एक पूरा माइंडसेट है वो भारत के नागरिकों का बदलेगा।
0: एक सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, खासकर हमारी जेन जीज के लिए, क्योंकि आपने दोनों दौर देखे हैं सर। आपने वो दौर भी देखा जब ये गुलामी की जो मानसिकता थी वो पूरी तरीके से छाई हुई थी और अपने ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति, अपने ही इतिहास से हम वंचित थे, और आज जब आप इस दौर में है संस्कृति मंत्रालय के सचिव बनकर जब आप विदेशों में जाते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं, तो और खासकर जब भारत की वो पुरानी धरोहर है, वो मूर्तियां, वो अमूल्य चीजें आप जब भारत वापस लेकर के आते हैं तो कैसा महसूस होता है, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
1: देखिए, मिक्स्ड भावना होती है। जब विदेश में जाते हैं तो कई बार हमें दिखता है कि भारत की धरोहरें उन्होंने अपने म्यूजियम्स में रखी हुई हैं और वो प्राउडली उनको डिस्प्ले करते हैं, तो मन में ये भी आता है कि ये धरोहर भारत की है और भारत के पास वापस आनी चाहिए। पर जब हमें कुछ हिस्सा धरोहर का हमें वापस मिलता है और हम वापस भारत में लेके आते हैं तो एक बहुत गर्व की भावना भी होती है, क्योंकि ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने बहुत निश्चय करके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। बट ये शुरुआत है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, जिसमें ना केवल भारत का कल्चर मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय काम करता है बल्कि भारत के सभी मिशन्स, सारे एम्बेसीज, सारे हाई कमीशन्स, हमारे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स पूरे विश्व भर में इस कैंपेन का हिस्सा बन के इस काम को कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि जो हम करते जा रहे हैं और जितनी हमें सफलता प्राप्त हो रही है उससे पूरे भारतवासियों को उस पर गर्व होगा। पर मैं ये भी मानता हूं कि और भी काम होना है, उस काम के लिए हमें और शक्ति हमारा देश देगा, हमारे नागरिक देंगे। और मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो भारत की रिस्पेक्ट और भारत की वॉइस जो आज सुनी जा रही है विश्व में, वो पहले कभी नहीं थी। जैसे आपने कहा कि मैंने पूर्व का दौर भी देखा है, मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में पूर्व में भी जाता रहा हूँ और अब भी मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में जाता हूँ, पर आज जो हमारी वॉइस है और जो जिस तरह से भारत को बहुत गंभीरता से सुना जाता है और जहां भारत कोई स्टैंड लेता है तो हमेशा हमारे को साथी मिलते हैं, क्योंकि हमारी बात नॉर्मली हम वैसी बात करते हैं जो विश्व के कल्याण की हो, जो विश्व को साथ लेके चलने की हो, और जब हम वो बात करते हैं तो हमारे को साथ भी मिलता है और हमें सफलता भी मिलती है।
0: सर एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों और खासकर हमारे जेन जी दर्शकों से, जबकि भारत में महिलाओं का वही सम्मान जो उन्हें दिया जाता था महिलाओं के लिए सामने आ रहा है, वही संस्कृति आज हमारी दीपावली का त्योहार पूरा विश्व मनाने जा रहा है, तमाम बदलाव आपने लेकर के आए केंद्र सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए बहुत सारे प्रयास हुए थे जिनको उस समय सफलता नहीं मिली, जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक सोसाइटी बनी थी, इट वॉज उसको कहा गया था ग्रेटर इंडिया सोसाइटी। उसका मतलब ये था, जो करीब 1926 में कोलकाता में बनी थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भारत से विश्व को गया उसको हम विश्व को बताएं। तो शुरुआत हुई, अब हम उसको बहुत अच्छे से विश्व को बता पा रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने गर्व से अपना सीना ताना सिर ऊंचा किया और अपनी बात पूरे विश्व में कहना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज जब हम कह रहे हैं पूरा विश्व उसको सुन भी रहा है और उसको मान भी रहा है और इसको हम सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं और इसको रिकग्निशन के लिए, ताकि ये ऐसा नहीं हो कि हम कहें और शुरू में माना जाए उसका इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं हो, उसकी हम इंस्क्रिप्शन भी यूनेस्को में कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो पूरा जो प्रक्रिया है, पूरा सेटअप है, वो ऐसा है कि ना केवल हम किसी चीज को एस्टैब्लिश करें बल्कि उसको एस्टैब्लिश करके हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि पूरा विश्व उसको रिकग्नाइज करे और रिकग्नाइज करके उसको डॉक्यूमेंट करे और फाइनली वो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में विश्व में मान्यता प्राप्त करे। उस और हम बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमैटिकली हम काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी।
0: तो हम बात कर रहे थे अब संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी से, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम जॉय पर। आपके साथ जुड़ी है आरजे ऑफ द ईयर। 8:04 हो रहे हैं हमारा और आपका साथ रहेगा 8:30 बजे तक। और इस भाग में हम खूब मनोरंजन करेंगे और आपको सुनाने वाली हूँ हिंदी फिल्मों के गाने, वैसे ही गाने जो आपको पसंद है। आइए सुनते हैं और शुरुआत करते हैं इस गाने से। अर्जुन रामपाल और ऐश्वर्या राय पर फिल्म आया गया था। अलका याग्निक और कुमार सानू के मनमोहक आवाज में हम सुनने वाले हैं दिल का रिश्ता मूवी का ये खूबसूरत गाना दिल चुरा ले।

ये था श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाजों में पल पल हर पल लगे रहो मुन्ना भाई से। आगे बढ़ते हुए हम सुनेंगे आपके मैसेजेस। हितेंद्र दास का मैसेज है कि इनको हमारा कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है। हितेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आने के लिए, और आपको जो भी गाना पसंद है आप हमें भेज सकते हैं, अगर हमारी प्लेलिस्ट में होगा तो हम उन्हें जरूर प्ले करेंगे। विकुंते का मैसेज है, इन्होंने लिखा है ओमेगा सांगते रोन काप काल सत मया सार ओमेगा सांगते ही तो एवेंजलिस्ट थी तका अफिल खप खप छीन दिया है रोन तेरी इन पतिन का राई सन कतेल दोन लो इन प्लाग जब का कतुम लो शिम शिम लल इन पुया फल कौन वेंग लाई है आरजे प्ले ले तुरखा नंगमा तान ले लोगाई थवे जोंग जोंग तान ले आरजे जोंग जोंग तान नरों तिनी वाम साव खब में कन लोम ठीन मंगे ओ आगे बढ़ते हुए दोस्तों सुनते हैं ये एक और खूबसूरत गाना बॉम्बे वाइकिंग्स से हवा में उड़ती जाए।

ये था बॉम्बे वाइकिंग से हवा में उड़ती जाए। इन्हीं का एक और गाना सुनेंगे हम, क्या सूरत है क्या सूरत है। लेकिन उससे पहले हितेंद्र दास का मैसेज इन्होंने लिखा है, ओके यार बहुत बहुत शुक्रिया इन्होंने कहा है, और इन्होंने गाने की फरमाइश की है, मुझसे शादी करोगी। ये मेरे पास नहीं है हितेंद्र जी, अगली बार आऊंगी तो मैं चाहूंगी मैं जरूर प्ले करूं इस गाने को, ठीक है। माफ कीजिए अभी के लिए, अभी के लिए मैं आपके लिए खासकर पेश करूंगी ये खूबसूरत गाना, क्या सूरत है क्या सूरत है।

इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं इस भाग के आखिरी गाने की ओर। जाते जाते हम सुनेंगे बैंग बैंग मूवी का टाइटल ट्रैक। एस एस साइलो ने लिखा है अब मोय एम मोइजेल दोनों दंग पोकर ऑन प्ले दोनों और लगाए चल चल दोनिया। और इसी के साथ मैं आज ही हमते आपसे इजाजत चाहूंगी, वापस मैं आपसे जुड़ूंगी ठीक 10 बजे। कहीं मत जाइएगा क्योंकि ठीक इसके बाद आज जो आपके लिए लेकर आने वाली है वेस्टर्न म्यूजिक। जुड़े रहेगा FM जॉय के साथ।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आप सभी का, जी हाँ, FM जॉय पर आपके साथ जुड़ी है आज उमदई। समय हो रहा है रात के 10 बजे और ये सिलसिला जारी रहेगा 10:30 बजे तक, और ये हमारा आखिरी भाग होने वाला है आज रात के लिए। और इस भाग में, आखिरी भाग की क्यों ना हो, मैं चाहूंगी मैं आपका मनोरंजन करूं, तो मैं आपको सुनाने वाली हूँ हिंदी फिल्मों के गाने। आप कोई भी बोरिंग मत रहिएगा, और बहुत बहुत शुक्रिया हम सभी के साथ बने रहने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गाने से, और हम सुनने वाले हैं इस भाग में ये सबसे पहला गाना, अगर तुम साथ हो, अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाजों में।

अगर तुम साथ हो, ये गाना हमने सुना और आवाज हमने सुनी अलका याग्निक की। और भी गाने दोस्तों हम सुनने वाले हैं अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की। मुसु मुसु हासी देव मलाइना, लेकिन उससे पहले ललित भुया फलकोन वेंगलाइन ने लिखा है, आज प्ले ले तुर्खा नगमा तान ले लुंगाई थवे जोंग जोंग तान ले आरजे जोंग जोंग तान ले कठियान ते वेंग सोंग सोंग मी तान रोंदीनी ललित भुया हियान मो वाम जाओ तीर थियाम चीन को मैं कन लोम तो कह हितिन दास असाम ने लिखा है। इन्होंने हमें गुड नाइट कह दिया है, बहुत बहुत जल्द है, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं हम भाग की, अंत में आप गुड नाइट कह दीजिएगा, है ना। अभी आप कहाँ सोने वाले हैं, हम और भी गाने आपके लिए प्ले करने वाले हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक और खूबसूरत गाना मुसु मुसु।

मुसुमुसुहासी देव मलाई लाई मुसुमुसुहासी देव, ये था प्यार में कभी कभी मूवी का एक और खूबसूरत गाना। हम और आप जुड़े हैं एफएम जॉय पर, आपके साथ जुड़ी है आरजे उमते। आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे एक और खूबसूरत गाना। ओमेगा सांगते का मैसेज है, लाइव प्ले मोय प्ले टू बॉक दिख वेल वेक करो देने हैं वहां लॉम थीन तक है वो तुम्हारे साथ पुई लो यंत्र। आगे सुनते हैं हम दर्द एक विलन से अरिजीत सिंह की आवाज में।

दोस्तों, ये था तुम हो, और आगे हम बढ़ते हुए सुनेंगे एक और खूबसूरत गाना जो कि होने वाला है राता लंबिया। हम सुनने वाले हैं बहुत दिनों बाद आपको स्टूडियो से मैं ये गाने सुनाने हूँ, शेरशाह मूवी से राता लंबिया।

इसी के साथ दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इस भाग के आखिरी गाने की ओर। जाते जाते हम सुनेंगे एक खूबसूरत गाना और ये होगा हमारे भाग का आखिरी गाना, तेरी आंखों से अपनी नजरें हटाऊं कैसे, जुनिता गांधी और सनम पुरी की आवाजों में। इसी के साथ मैं आज ओमती आपसे इजाजत चाहूंगी, वापस मैं आपसे जुड़ूंगी बहुत जल्द अगले थर्सडे की रात उसी समय, और तब तक आप खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और जुड़े रहिएगा FM Zoy के साथ। आइए सुनते हैं तेरी आंखों से अपनी नजरें हटाऊं कैसे।